0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamgil Hopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamgil Hopti Litin.
2: Jachewi singe namba ngane bejong longchen nyin chile kong kangge longchen je sada chi chi len chen ge ge long zo ni ma yin a tinin hon de goma go no la a ani ngan so chire se dil ta a jin ju lo ti bi chen nai da ji ba ten ba se an di go no ta an ji de ju ko le a ani za rang go no kan de ji su yo ba ta ani je wa go no ti dai yo su ju ko kan de ji ge ba ta pe ji go ton do di ji ki ba ten de ji re ani de dan da de ngan so zuo chun chun ni di ji yo ba de de zo to ma zuo de ni ji ko ni ma sa hin do di ji ge ji ni अनि ज्वा तंबो दे गारे से बयिन ना अनि जेदे जु छेते चाय चानि छेरि नको नय माई बाग यवा जि छेजि रे नय माई बाग छेजि रे जेदे वेंजा ता मति छिन जि दिसो गो नोना अनि सचि गो नोना जिंजु ल तुबि गो छे नय दा जि बा तेंबा से या क सचि दे जु खोसो ल दि यो रे ते जेंसे गा ले जे रे से या दे ता ते जेंसे तो दे गारे से बयिन ना ngi chi ga so la ti ki bi ga sa le yan ti ga sa la shu ta chi yo ba ni 做的他进去了对比个车那样的几把电巴是啊个杀进对空是了啊你那一节啊车上当啊你阎王进车上的过对你啊你电给个有的那那起来在那他啊那一当阎王进去车阳子做把的哎你杀进对空是了对你电给把电这起的电这一把阎长啊你过节的打不的适当个钱你过那一买那样过车阎王进
3: 金银把银子啊，你啊，杀进地空是了，啊，你人家的对你，我也点给把，等着几日啊，等着几日才的了，抓他们的就搞点落地去呢，等着是。等着抓你把的干了也是吧？那抓你把的干了也是吧？那，他孙子把个早个弄了，金就一个就不了，猪八戒呢，接的硬些呢，啊，你金就不个这边个啊，干的说，吃这边的马多了，啊，你啊，顶上俺做个大用那个。
2: 吃这个土豆了，大半夜打不死呀！就那个人哇，天气热些的，早上我弄了，你是那样嘛的意思？你是马丁给别人生产的这些意思呀？对的。啊，大天啊，做的起来些的了，甚至把些个用的在一起呢，啊，你个金柱个啊，你小娃做点别个等这个用起来的啊，等于的是了啊，金柱个马柱把金柱打马柱哇，个等这个打日子级别个吃，啊，你啊，结束的。 अनि सञ्जुपा गता तेजा चो रजि छायो मारे त मिसल मिसक अनि छ खासी खासी चिरस को जिंजु ता मानस याना जिर जिंजु को माड न को अनि को गिबा छेबो यो बाय जा तेसो अनि तेंगु यो तेजा तेसो न्यूयु रवा जे चाय छ नि चिरस न ता मे तम ता बे न को अनि मि कि ता ग जबिक छेन जा बो जे मा यंजा अनि को जिर मिस मा ते बारे नि ग छानी अनि ता मे तम ते गान ला सो बा ग छ चो बो ता दुर न अनि चिरस दि को जे दि ग छ ग न अनि पेशे के छानी तो जति न्यूनु जिन दे बा अनि जेदे जि छे गनो अनि पाबी के रिस जि बिग जोन रबो जि छेन रबो जि व तें जि यें बा यें जा अनि जावा न रंग गनो ना अनि निस मा दे बा रेस व त तें जि के जि ता ते छे रे से दि लंग जों दे गोंग अनि लोटि जि नां दे दन जे बिक जवा नि जि को सा हे जि ता ते रे गा जो हे जि दि छे रे से दल ता जेदे जि तें जु जो सु को रे 哦，你的就彻底做点刚去点吧，那就个点小股去就的。他等于说点小就搞的，可能甚至把个早个弄了哒，你就把现在你的银子，你的银子啊，等这个刺激点有的，等你的银子把点个，啊，你你把它对比个点你对吧啦？啊，你干了说把个彻底不得说的，你就把有的意思你个啊，啊你啊，多长期，很多之类的那对比刺激，啊，你点就小就搞的，给点有的。
3: 啊，电影把的，人家他这个人吧啦，啊，金黄个弄了家伙，啊，你你把他得把，说说干这几银把的，第一笔钱拿说把，他说的血差干干净，金黄个弄了输油嘛的，啊，输油嘛的，金黄个弄了输没那样，人家养起这么多，就是让你跟这边啊，当就跟这把干的是没弄个弄了呀，啊，你那张对面对线那，你都占据是呢，那张对面对线呢，你都占据，搞把当是呢，他，干这事过了，明个那张忙不急。 啊，你养的养的啊，你下了些吧啦啊，你觉得个咋啦？什么就把这些那个实战技术嘛，马多啊，你啥个钱就个别记得就个，你等下把它呢要嘛的啊，等你要嘛的。但要嘛的，等于就他那个是啦，做的起来那个做啊，养起这边多就困难个哒啊，可能孙大哥用的是有空堵塞，对不对？哎，肯就塞得个，俺这边给他没得亲戚，我得土地把的，因为这是没得亲戚，拉手把给他，甚至得说个难了。
2: 아니 제디주 거가 다 된주 조수 대소대 간대지 수용 바 대소대 다 예양라고 시니 아니 마시아는 너자지